तू बहुत सियाना है, बड़ा समझदार होगा, फिर भी तू उन्हां नूं पुछ लै, ताहू खरे सुजान बन्या इन्हीं कपड़ी, जेड़े इन्हां पानियां चो लंघे होए ने किसे नवे पतन ते आ जावे, किसे नवे नदी दरिया ते पहुंच जावे, उथों लंघण दा मसला पैदा हो जावे ना, तू भावे किड्डा वड्डा तारू है, फिर भी तू उन्हां नूं पुछ लै जेड़े इस राह तों लंघे, पता नहीं किथे भंवर होवे, किथे पानी दी की दशा होवे, इस राह विच लंघण वास्ते चंगा रवे जे तू किसे तारू नूं जिहड़ा इथों लंघिया होवे उहनूं पुछ लवे, इथों तूं किवें लंघिया सी, की हालत है। इसे तरह धर्म के मार्ग से बंदा किन्ना होशियार ते चलाक, धर्म के मार्ग से उन्हां लोकां दे नाले गल कर लैणी, लालन रावया कवन गति री, तू किस तरह पति नाल प्यार कीता है, तू प्रभु नाल किस तरह प्यार पाया, प्रभु नाल तेरी सांझ किवें पक्की होई है, तू प्रभु नूं किवें पाया, सखी बतावो मुझे मतीरी, मैनू भी तू मत दे, चाहे पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, जिन्हां सुहागणा ने घर स्वर्ग बना रखे ने, जिन्हां दे घर दे विचों खुशियां ते खेड़िया की खुशबू उठती है, उन्हां नूं पुछ लेना चाहीदा है ये खुशबू तुहानूं किवें प्राप्त होई, इस घर नूं स्वर्ग तुसां किवें बनाया, चाहे पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, ते जिन्हां घरां चों कलेश उठदा होवे, जिथे प्यार की कोई सांझ ना होवे, उन्हां नाल गल करन दी भी की लोड़ है, मत उन्हां नूं कोई मत ऐसी मन च आ जावे, उन्हां दे कोलों कोई ऐसा रंग चढ़ जावे कि अपना भी जीवन खराब कर पईए, उन्हां दे नेड़े होईए जिन्हां दे जीवन च सुख नजर आउंदा, जिन्हां दे जीवन च आनंद नजर आउंदा, जाए पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, वो जिहड़े संत भगत परवान जो प्रभु पाया, सही विचखण जंत जिन्हीं हर ध्याया, जिन्हां दे बारे सुखमणी साहिब पढ़ने जो जाने ते सदा सुख होए, आप मिलाए नए प्रभ सोए, ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन

भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जो आप चल सकता है धर्म दे मार्ग दे किसी होर नूं तोरन दी समर्था रखता है एहो जिहे बंदे नूं लभ के उहदे नाल मित्रता पाई सोधा लाहेवंदी रहिंदी ते जिस दिन कोई मिल पैंदा है धन गुरु नानक दा सवारिया है भाई मनसुख जिस दिन महाराज शिवनाभ नूं मिलिया सी ओह वरतां पूजा करमां बेहत तरह दी रस्मां च फसिया है बंदा जिस वेले भाई मनसुख दे दर्शन कीते हैरान हो गया यह तो कोई वर्त नहीं रखता यह तो कोई पूजा नहीं पिया करता यह तो कोई पखंड नहीं पिया करता यह तो कोई रचना नहीं रची बैठा मेरे सारे राज विच मेरे हुक्म अनुसार धर्म कर्म पिया चलता है यह बंदा उस तो बागी होके इन्हें नेत्रां च मस्ती है किस तरह हो सकती उन्हू कहिंदा सजना यह नेत्रां दी मस्ती यह बोलां दी मिठास यह जीवन के हुलारा ते आनंद तेनू कित्थों मिले ते भाई मनसुख कहिंदे ने गुरु नानक दी मत लै के गुरु कोलों समत लै के गुरु कोलों जज सेख के जीवन का यह आनंद अपने आप आए चरणा ते पै गया कहन लगा सजना मैनू भी दस फिर यह आनंद मैनू किवें आ भाई मनसुख फिर अपनी पूजा करवाउण नहीं पै गया राह दस दिता कहन लगे प्यार उहदे नाल कीता सी उहनें बाह फड़ के अपने बना लिया प्यार उहदे नाल करके तैनू भी बाह फड़ के अपना बना लेगा कहिंदा मैं लब्भा कित्थों प्यार किवें करां भाई मनसुख हस पै कहन लगे महाराज शिवनाभ जे प्यार करके प्यारे नूं लभणा पै फिर कहदा प्यार कीता तू प्यार करके प्यारा आपे खिचिया तुरिया प्यार विच इहनी खिच पैदा कर ओह आपे तैनू लभदा फिरे तू उहनू लभण ना जावे बल्कि तैनू ओह लभदा फिरे ऐसी चिंग ला दित्ती ऐसी रचना रच दित्ती उस राजे दे अंदर धन गुरु नानक खिचे चले गए राजे शिवनाभ दे प्यार ने गुरु नानक साहब नूं सगला दीप खिच लिया कि जे ओह प्यार करना सानू भी आ जाए या इहो जिहा प्यार करना

विसर गया है मरण, तेनू विसर गया जिस वाहिगुरु ने संसार ते भेजा है उसने सदना भी है, जिस वाहिगुरु ने तेनू अमोलक स्वासा दी पूंजी हीरे लालां तो महंगे तेरे स्वास, ते उसने हिसाब भी तो मंगना है उना स्वासा दे लाला नाल, कितने को तू नाम दे लाला दे वर्ज कीते हन उथे ता लेखा पुछा जाना, इसलिए सानू चेता करा रहे हन धन गुरु नानक पातशाह कहंदे विसर गया है मरना चेता कर, मालिक ने सदना तैनू।

नाम रूपी अमृत पीता ओह ही सुचे रहे हन सुचे से ही नानका जिन मन वसिया सोए उस परमेश्वर दा नाम जे हिरदे विच वस गया ता तू साफ सुथरा सोना बन के निरंकार दे द्वार जावेगा ते जे सिमरन नहीं कीता विकारा विच तू फस गया ता अपनी आत्मा नू ही कलंकित करके जाएगा किसे माड़े पुरुष नू संसार विच नहीं रहन देंदे कोल नहीं बैठन देंदे आख्या ऐसे तरह जदों तू दरगाह विच जावेगा उथे भी तेन कोई कोल ना बहन देवेगा उच्चारण करो श्री वाहेगुरु इसलिए गुरमुख त्यावे से अमृत पावे से ही सूचे हो ओहो ही सुचे हन ओहो ही चंगे हन जिन्हां ने जपया श्री

कुछ पछतावा कीता है कि हे निरंकार मैं संसार ते आके जो कुछ करना सी ओ कीता नहीं। मैं मोह माया दी नींदर विच सुता रहा, मेरा सौ जागे हौन इस बार सोवा। इस संसार दे पंज झगड़िया विच पै के मैं सारा जीवन अपना एवें व्यर्थ गवा लिया। सेजे रमत नैन नहीं पेखो, हे परिपूर्ण परमात्मा तू ता मेरे हिरदे रूपी सेज ते जाग रहे, पर मैं मोह माया दी नींदर विच सुता ही रहा, कदे तैनू वेखण दा जतन ना कीता, कदे तेरे चरणा विच जुड़ के ओ महान रस ना मान सकिया जिस नाल मेरा लोक परलोक सौरदा सी। इसलिए मेरी मत बहुरी हो।

पंच को झगड़ा, झगड़त जन्म गवाया, संसार वल निगाह मार के वेखिए, बस इना पंजा झगड़िया विच ही मनुख सवेर तो शाम तक और रात तो सवेर तक इना ही झगड़िया विच पिया होया। इसनू परमेश्वर दा सिमरन भोली गया है। इसे लई गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे हन, अब मैं कौन उपाओ करूं, जे बिद मन को संसा चूके पवनिद पार परो, जन्म पाए किश पलो ना कीनो ताते अधिक डरो। इसलिए कबीर जी कहिंदे हन, भाई सुख तां उना ही पाया है जिन्हां ने जपिया श्री वाहिगुरु। तो इसलिए झूठी माया सब जग बांधिया, झूठी माया ने तां सारे जग नू बनिया, पर रब दे प्यारे अमृत वेले जाग के नाम जपदे हन, सेवा सिमरन करदे हन, अपना जीवन सफल करदे हन। सेजे रमत नैन नहीं पेखो, ए दुख कांस्यो कहोरे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसार्यो, किन बिद रैन रहोरे, बाप साब का करे लड़ाई, माया सद मतवारी, बड़े भाई के जब संग होती तब हो ना है प्यारी, कहत कबीर पंच को झगड़ा, झगड़त जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया। कबीर जी कहंदन, मैं राम रम

इस महिमा विच मन बिरते एकाग्र करके सुरत द्वारा सतगुरु दे चरणा ते सिर रख दिता है, चरण फड़ ले और महिमा कर रहे हो।

अंदर बोल दी, अंदर आवाज नहीं आ रही। रसना सिमरन सूक्ष्म हो गया, रसना जप रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही। जिमें कह लो खामोश आवाज, वो आवाज जिहड़ी एक कन नहीं सुन दे, जप रहे हो ते एहसास कर रहे हो कि शरीर दे अंदर गूंज हो रही। सूक्ष्म सिमरन सूक्ष्म हो गया, सिमरन हौली हो गया लेकिन अंदरों पावर वध गई, अंदरों पावर वध गई, अंदरों गूंज

होंठ भी बंद हो गए, होंठ भी बंद हो गए, रसना भी बंद, जीभ तालू नाल लग गई, जिमें जड़ हो गई हो गए, जड़ हो गई जीभ, हुण सिमरन होर भी सूक्ष्म हो गया, जीव नहीं हिल रही, रसना दे अंदर दियां सूक्ष्म नाड़ियां जेड़ियां बाहर नहीं दिसती, अंदर उन्हां नाड़ां विच धड़कन हो रही।

शीश ते हथ रख दिता है। सतगुरु जी दे पवित्र हथां दी शोह ने लूं कंडे खड़े हो गए। मेरा रोम रोम नशे आ गया है, जिवें सतगुरु ने असीस दा हथ फेरिया है। असीस दा हथ फेरिया प्रसन्नता बख्शी है, खुशी बख्शी है। लूं लूं लूं कंडे खड़े हो गए ने। हुण जिहड़ा अंदर सिमरन हो रहा है वह लूआं विच आउणा चाहुंदा है। मानो इउं लगदा है जिवें लूं भी कह रहे होण कि असीं भी जपना है, असीं भी जपना है। हुण रोम रोम जपण लग्या है गुरमुख, रोम रोम हर त्यावै।

0: जप रे, रोम रोम जप रे, रोम रोम जप रे। अंदर पुकार पैदा हो रही, अंदर प्यास, अंदर प्यास।
1: Yes.

हर हर नाम गोविंद, जप मन हर हर नाम गोविंद। पागी गुर सतगुरु पाया गुण गावत परमानंद, जप मन सतनाम सत सतनाम।

चार पाप दो सिंह कुमकुम को अब कैसे गुन गई जप मन सतना। चार पाप दो सिंह कुमकुम को अब कैसे गुन गई ऊठ तो बैठ खेंगा पर कब तक मूड ले।

0: जय त्यागी हर पुरख निरंजना,
1: जय हर सिमरन भया तै अपार जगत कीनी, बड पागी हर जपना, बड पागी हर जपना। आखिरी पंक्ति है,

कट कट रव रया बनवारी। कहंदे ने दुनिया दे मुसलमान काबे दी ज़ियारत करन तुरे जा रहे सन, ओदां दे कपड़े पहने हुए। कबीर जी कहंदे ने मैं भी तुर पिया भई शायद परमात्मा रब उत्थे मिल जावे। कबीर हज काबे हों जाए था, कहंदे ने अगे मैनू खुदा मिल पिया ते खुदा ने मेरे नाल झगड़ा किया। कहन लगे कबीर किथे चले है? मैं क्या मालिक मैं तां तैनू मिलन चलिया। तां कहंदे ने नाराज हो गए मेरे नाल झगड़ा किया भई लोगों की तां मत मारी गई है तेरी भी मारी।

इयों ऐसे दंत कलेश में खपियो संसार कह बिन सतगुरु को नहीं पहले तनहारा जह ऐसे खड़ग